कम हो दिल्ली लूंगी चिल्लो कुम तू हो ऐ किंग चिंग पारा जाने हो कोई चिया बीच चावा पा मियो चावा पा वो ये चिल मेल चिनो स्पिक स्पोर्ट लकी लूने पोटिनो बेडो इंपीरियल फर्नीचर गुलु मतिनुंगे ए जंक्शन मेरिंग रोड मत टॉक टू मी यू अलोगलुम इंपीरियल फर्नीचर आये लोयो की गुलु सिटी यू बुकिताना दुगोला मेचा कचिल की साइड बोर्ड पिंगे Abungwe na deka bichel, bichel a bicha biro. Imperial Furniture.